आवाज ऑन करनी भुल गया सा ते बोली जान दिया ते आवाज ऑन एयर जा नहीं सी रही ते सॉरी मैं फिर दोबारा शुरू करना। मैं ना सजनों उस वक्त बीए फर्स्ट ईयर दे विच सी जदों मैं पहला अपना उत्थे विसाखी का मेला वेख्या सी जिहड़ा ते उन्हां दिनां दे विच बड़ी सिंपल लाइफ हुंदी सी बहुत सिंपल लाइफ लोग गड्डियां रेड़ियां ते ट्रैक्टरां ते टांगियां ते मेला वेखने जांदे हुंदे सन। हां जी ते मेले दे विच बड़ियां ही रौनकां लगियां सन हर मेले दे विच रौनकां हुंदियां सन कबड्डी घोल ते सिंगर खान पीन नूं वधिया चीजां बड़े स्टाल लगे ते कुड़ियां दे पघूड़े ते ये वो दिस दैट बहुत कुछ सी। ते गल इस तरह भाई ओ जदों अहीं मेला वेखण गए ना मैं भी गया सी ते इहदा ओहदा अखीं डिठा हाल जिहड़ा सी जिस तरह मैं मेला वेख्या सी ओ विसाखी दा ओ लगा जी बयान करन ते मीतो जीतो पास सुरमा आईया बच्चियां नवियां फराकां पाईया भाई मीतो जीतो पास सुरमा आईया बच्चियां नवियां फराकां पाईया भाभी वीरो दंदासा मलिया वेली जागर ने खूंडा फड़िया बंसा कबड्डी खेडण आया पिंदे अमली ने सूटा लाया भाई बंसा कबड्डी का थम वर्गा जवान जवान बुटरां दा साडे इलाके दा मन्या परमन्या लॉकर से वड्डे वड्डे रेडरां दियां ने बाजियां पवाईयां रज के सोहना ते सोहना ही शरीर ओनू उपर वाले ने दिता सी वेली जागर ने खूंडा फड़िया भाभी वीरो दंदासा मलिया बंसा कबड्डी खेडने आया पिंदे अमली ने सूटा लाया ओ कंधा विच फिरे वजदा ससे घगरा सूफ दा संदूख विचों कढ दे नी मेले विच ढोल वजदा घगरा सूफ दा संदूख विचों कढ दे मेले विच ढोल वजदा। दोस्तों मेला शुरू होने तो पहला तीन चार दिन पहला रात नूं ढोल वजना शुरू हो जांदा हुंदा सी ते ओ छे छे मील तक रात नूं ढोल सुनदा हुंदा सी चार चफेरे घुग्गी ढोली ने ढोल वजाया वीआं पिंडां दा दिल तड़काया घुग्गी ढोली ने ढोल वजाया वीआं पिंडां दा दिल तड़काया बोतलां नाल गलासियां खड़कण संते बंते ने तुरले छड्डे आओ मेले नूं जांदे गड्डे बलदां दे गल टलियां खड़कण संते बंते ने तुरले छड्डे आओ मेले नूं जांदे गड्डे बलदां दे गल टलियां खड़कण कक्के वाल बचनों दे ए तां दुधिया मक्की दी छली जे दमड़ी दा सक मार के अग लाउण मेले नूं चली जे बलौरी अखां वाली दिल मेरा लै गई मेले च मिलांगे मैनू कह गई छाल मार गड्डे ते बह गई तू पिछे पिछे आवी भजदा सस्से घगरा सूफ दा संदूख विचों कढ दे नी मेले विच ढोल वजदा वाह वाह मुटियारां टोलियां बन बन आ गईयां सारे मेले विच छा गईयां ਉਹਨਾਂ ਮੱਲ ਲਏ ਪੰਘੂੜੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬੰਨ ਬੰਨ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਲ ਲਏ ਪੰਘੂੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਲਫਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗ ਜਿਵੇਂ ਹਾਸੇ ਅਨਹਦ ਰਾਗ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗੂੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਲਫਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗ ਜਿਵੇਂ ਹਾਸੇ ਅਨਹਦ ਰਾਗ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗੂੜੇ ਭਜੋ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਬਿੰਦੋ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਸਾਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਹੱਥੀ ਰੰਗਲੇ ਚੂੜੇ ਰੰਗ ਅੰਬਰੀ ਫੌਜਣ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ
ਕੋਕਾ ਛੱਟਣ ਬਣਸੋ ਦਾ ਮਾਰੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਤੇ ਨਿੰਮੋ ਫਿਰੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਨੀ ਸੱਸੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਈਆਂ।

दूजे करी चले डाकी रख दे नजर बई अपने करां दी इन्नी हुंदी नहीं खबर बई दूजे करी चल डाकी

0: हारे नाले में जाके तुम धो के आका लारे गारे गारे
1: गारे बड़े से
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे
1: हमको मटका
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जीने ये सूर इन्ह आया है तो
0: एक चतुर नार
1: अब छोड़ेगा नहीं जे
0: एक चतुर नार
1: अब पकड़ कर रखेगा जे
0: मेरे मन के द्वार ये भूत जा

बीच चुराई, तुझे सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई। अरे घोड़े

0: ये गोड़ा चतुरा
1: एक पैर है ना, या गोड़ा बोला या चतुर बोला।
0: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार यह भुटत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

0: गले लगाता। मोनिका ओ माय डार्लिंग, एवी उन्होंने भाई सुना,
1: बहुत सुने, बहुत सुने।
0: और उन्हां दे गीत सी बड़े हिट गीत ने उन्हां दे, ते खुशी छा जाती है आंखों में, सुरूर आ जाता है जब तुम मुझे अपना कहते हो।

0: Thank you.
1: बहुत खूबसूरत भाई, वंडरफुल। हाँ जी, मैं
0: अज
1: दो शेयर करा, ठीक है जी?
0: जी आन दे दे।
1: असी भी तेरे गीत भी साढ़े तेरे ने, असी भी तेरे गीत भी साढ़े तेरे ने, ओए तेरे ही दिन रातां शाम सवेरे ने, किधरों आ जा आके दुख वंडा मेरे, मैं कला ए चंद्रे दुख वधेरे ने, भाई मैं कला ए चंद्रे दुख वधेरे ने। दूसरा जी, गली विचों माही लंघिया कूच अड्डियां झांजरां पावां, गली विचों माही लंघिया कूच अड्डियां झांजरां पावां, सोचां च पछाड़िया गया फिरां उड़दी विच हवावां, सोचां च पछाड़िया गया फिरां उड़दी विच हवावां, फुल्लां वाली टंग कुड़दी ते थले घग्गरा सूफ दा पावां, फुल्लां वाली टंग कुड़दी थले घग्गरा सूफ दा पावां, ते पूछां वाला पावां सुरमा अंग अंग नूं सौण ते लावां, फुल्लां वाली टंग कुड़दी थले घग्गरा सूफ दा पावां, पूछां वाला पावां सुरमा अंग अंग नूं सौण ते लावां, खूह ते मेल मित्रा तेरा उणदी स्वैटर आवां, खूह ते मेल मित्रा मैं तेरा उणदी स्वैटर।
0: वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच सर।
1: रौनक लाइया एक बार फिर, गुड विशेस साडे सारे दियां,
0: थैंक यू सो मच।
1: ते परमात्मा तुहानू तंदुरुस्त रखे, ते तुसी इसे तरह खड़क दी आवाज विच बस सानू सोहणे सोहणे गीत सुनाओ।
0: आप जी की सेवा च लगी रहा, बाजवा साहब नाल मुलाकात हुंदी रहे।
1: थैंक यू,
0: ओके, हैव ए गुड टाइम।
1: थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।
0: थैंक यू
1: दोस्तों, दिल्ली तो आराधना जी, वंडरफुल लेडी, जेडे बहुत खूबसूरत गाने रौनकां दे प्यार भरी भाषा दे विच गल करदे ने। सो सजणो, ए सी साडा अज दा प्रोग्राम। जिन्हां दोस्तां ने रौनकां लाईआं, जिन्हां ने सुनिया, सारिआं दा धन्नवाद। ते अगले हफ्ते फिर सैटरडे ते संडे तुहाडी सेवा विच हाजिर होवांगे। उदों तक देशां विदेशां च सुन रहे प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट ने सारे स्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम अलैकुम, नमस्कार एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल द लवली एंड स्वीट पीपल ऑफ दिस प्लैनेट।

ये करनी है चंगा साडा तां हो गया कंगा 200 विच पानी पै गया 200 विच पानी पै गया मैं इत्थे जोगा रह गया मैं इत्थे जोगा रह गया और बारगी सवारी चली कलैणी कलैणी की मोटर विच चढ़

ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो प्योर ऑन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑन

जी दोस्तो, गुरु रविदास जी की बाणी वक वक रागां विच दर्ज है। जिवें कि सिरी राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है, गौरी राग दे विच पांच शब्द, आसा राग दे विच छे शब्द, गुजरी राग दे विच एक शब्द, सोरठ राग दे विच सत शब्द, तनासरी राग दे विच तीन शब्द, जैतसरी राग दे विच एक शब्द, सूही राग दे विच तीन शब्द, बिलावल राग दे विच दो शब्द, गौंड राग दे विच दो शब्द, रामकली राग दे विच एक शब्द, मारू राग दे विच दो शब्द, केदारा राग दे विच एक शब्द, भैरव राग दे विच एक शब्द, बसंत राग दे विच एक शब्द, ते मलार राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है जी, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज हन। उन्हां दे कुछ प्रसिद्ध शब्द जेडे है वह है, तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, तू मैं हां मैं तू हां साडे विच की फर्क है। जिवें कि बेगमपुरा शहर का नाम, बेगमपुरा शहर का नाम है जिथे कोई गम नहीं, मेरी संगत पोच पोच दिन राती, मेरी संगत हमेशा रब दे नाम विच लीन रहिंदी है, संत तुझी तन रंगत प्राण, संत दी भगती नाल ही जीवन सुखी हुंदा है, तुम चंदन हम इरंद वापुरे, तू चंदन है मैं एक छोटा जिहा बूटा हां। जी दोस्तो, साडे नाल दिल्ली तो आराधना सिंह जी जुड़े हन, जो कि इकताली दे इकताली शब्द उन्होंने गाए हन, उन्होंने याद किते हन, ते असी उन्हां दा ते एक शब्द थानू असी सुनाने हां, जो कि क्योंकि वो साडे नाल लाइव होके गा रहे हन, ते असी उन्हां दा एक रिकॉर्डेड जिहड़ा शब्द है वह थानू सुना रहे हां जी। जी सुनो जी।

0: कुछ भी विवेश न बूझ, कुछ भी विवेश न बूझ, कुछ भी विवेश न बूझ।
1: हां जी, कहंदे हर सो हीरा छड के करे आज की आस, जो इंसान कीमती रब नू छड के किसे होर उत्ते आस रखदा है, ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास, उस दी जिंदगी नरक है, ए गल असल रविदास दसदा है। जी भगत कबीर जी कहंदे हन गुरु ग्रंथ साहब दे अंग 1377 दे विच, कई फाजल मानदे हन कि श्री गुरु नानक देव जी ते गुरु रविदास जी दी मुलाकात हुई है, पर असल जगह ते अरसे बारे तकरार है। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच गुरु रविदास जी दे 41 वाक 16 रागां विच दर्ज हन। इस तों अलावा रैदास जी की बाणी नाम दी एक हाथ लिखत किताब नागरी प्रचारणी सवा कोल मौजूद है। भाषा विभाग पंजाब ने भी इन रचनावां नूं बाणी सतगुरु रविदास जी दे सरलेख अधीन 1984 विच पब्लिश कीता। गुरु ग्रंथ साहिब विच मौजूद सतगुरु रविदास जी दे 40 शब्द ते एक सलोक नूं काबले इतबार दा खिताब हासिल है। जी गुरु ग्रंथ साहिब विच मौजूद सतगुरु रविदास जी दी बाणी दे सफे हन अंग 93, अंग 345 तों 346 तक, अंग 486 तों लैके 487 तक, अंग 525, अंग 657 तों लैके 659 तक, अंग 694, अंग 710, अंग 793 तों लैके 94 तक, अंग 858 तक, अंग 875, अंग 973 तों 974 तक, अंग 1106, अंग 1124, अंग 1167, अंग 1196 ते अंग 1293 दे उत्ते श्री गुरु रविदास जी दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है। जी जी कहिंदे हुण असीं अगर असीं सफर दी करिए, गुरु रविदास जी ने दक्षिणी एशिया द्वारे 6 सफर कीते उन्होंने, ते इस तो पहला सफर सीगा गुरु रविदास जी ने ते परमेश्वर कबीर जी ने इकट्ठिया बनारस तो पहली यात्रा शुरू कीती। इन्हां दोनां दे नाल सतगुरु रविदास जी दे पुत्तर विजयदास जी हम सफर सन। ये इलाकियां विच उन्हां दे सफर दे विच शामिल हन नागपुर, भागलपुर, माधोपुर, चंदोसी, बीजापुर, रानीपुरी, नारायणगढ़, भोपाल, बहावलपुर, कोटा, झांसी, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, अमरकोट, अयोध्या, हैदराबाद, काठियावाड़, मुंबई, कराची, जैसलमेर, चित्तौड़, कोहाट, खैबर दरा, जलालाबाद, श्रीनगर, डलहौजी, गोरखपुर। दूजा सफर दे विच उन्होंने जिहड़ा सफर कीता है गोरखपुर, प्रतापगढ़ ते शाहजहांपुर दी यात्रा कीती। तीजे सफर दे विच गुरु रविदास जी ने हिमाचल प्रदेश जाके लोगों नूं इलाही सुनेहा दिता। चौथे सफर दे दौरान हरिद्वार, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, त्रिवेणी ते होर जगह जाके संत साधुआं, भगतां, नाथां, सिद्धां, अमीरां, गरीबां दे नाल विचार सांझे कीते।

माटी को उतरा कैसी नचत है, माटी को उतरा कैसी नचत है। देखे देखे सुने बोले दौरियो फिरत है, देखे देखे सुने बोले दौरियो फिरत है, माटी को

0: हां जी, गुरु रविदास जी का समाज ते प्रभाव बहुत ही गहरा ते क्रांतिकारी सी। उन्होंने जात पात दे भेद भाव नूं चुनौती दित्ती अते मनुखी समानता का संदेश दिता, जिस नाल दबे कुचले वर्गां नूं आत्म सम्मान ते हक लई खड़ा होण दी प्रेरणा मिली। उन्हां दी गुरबाणी ने लोकां नूं रस्मां ते अंध विश्वासां तों मुक्त करके रब नाल सिद्धी भगती दा राह दस्या। बेगमपुरा वर्गे शब्दा राही उन्हां ने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जिस विच कोई गम नहीं, कोई जात पात नहीं, सब नूं न्याय मिलता है। उन्हां दे उपदेशां ने भगती अंदोलन नूं मजबूत किया। मीराबाई, गुरु नानक वर्गे महान संतां नूं प्रभावित किया। अज भी गुरु रविदास जी दीआं सिक्ख्यावां समाजिक न्याय, समानता अते मनुखता लई प्रेरणा दा स्रोत हन अते लोकां नूं भाईचारे ते रूहानी चानण वल तुरन लई प्रेरित करदियां हन। जी दोस्तो, नमस्ते, सलाम। अज दे खेड़ा लाइव शो दे विच बस इन्ना ही। आराधना जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं अपने कीमती समें दे विचों समां कढ़िया ते श्री गुरु रविदास जी दे शब्दां राही साडे स्रोतियां नूं निहाल कीता। जी असीं आशा करदे हां कि साडी इह सांझी कोशिश तुहानूं पसंद आई होगी। जी आराधना जी, लास्ट एक मिनट विच की कहना चाहोगे?
1: जी मैं यही कहना चाहांगी कि गुरु रविदास महाराज जी दे चरणां च सारे जिनी सृष्टि दे लोक ने सारी संगत जुड़ी रहे और बाणी सुनदे रहन, बच्चा नूं भी सिखाउण और घर घर बाणी सुनाई जावे, बच्चा नूं भी सिखाई जावे, आप भी सुनिया करो। बाणी तो बच के मैनू कोई भी लिरिक्स अच्छा नहीं लगता, वैसे प्रोफेशन है साडा गाना बजाना, पर इस करके गीत गजल भजन गाई दे, लेकिन जो शब्द बाणी च आनंद है ना, सिक्ख्या भी है और तुहानू बल भी मिलता है और पूरी तुहानू ऊर्जा मिलती है बाणी पढ़न नाल। ते मैं तो यही कहांगी कि बाणी पढ़िया करो, सुनिया करो और एक दूसरे नाल बाणी बारे ही चर्चा होनी चाहिए। आप जी का अनेक अनेक धन्यवाद, तुसी इन्ना समय मैनु दिता अपने अनमोल समय चो, और मैं प्रवास रेडियो दी हमेशा आभारी हां, हमेशा आभारी हां और हमेशा आभारी रहांगे। और साडे जेडे श्रोता सुन रहे ने, आप सब नु बड़े अदब बड़ी आदरी नाल सत श्री अकाल, और इसे तरह तुसी प्रवास रेडियो नाल जुड़े रहो, साडे केड़ा साहब जी दे नाल प्रोग्राम सुनदे भी रहो और अपनी गल भी अपने विचार भी सांझे करिया करो। मैं तो यही कहूंगी सर, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद आराधना जी, धन्यवाद जी। हां जी दोस्तो, बस खेड़ा लाइव शो दे विच बस अज इन्ना ही, फिर एक नवा प्रोग्राम जानकारियां भरपूर लैके थोड़े नाल असी जुड़ांगे जी।

0: हाँ जी जी जी जी हो रही है बस आली खिड़े ने जी जी जी सोना पाकिस्तान बस कई लोग कोजा बना छड़ना चाहते हैं अल्लाह ताला बचाया है जी वो तो हूं घट गया जे वो जेड़ा वे ओ दू तीन दिन तो आईडी की वजह तो दोवे घर जेड़े ने आराम नाल बैठे सन जा जा जा जी गुआंढियां नाल जेड़ा है वो अच्छे तलकात होने चाहिए ने उत्थे समझ नहीं रहे वो साढ़े एक पंजाबी च फिका बोलते ने हरे तुहाडे वाल बोलते ने कि नहीं दूर दे सज्जन नालों नेड़े दा दुश्मन चंगा तुहाडे वाल नहीं खरे बोलदे साडे वाल बोलदे ने कि दूर दे सज्जन नालों नेड़े दा दुश्मन चंगा ओ इन दा नेड़े दे दूर दे तुहानू ओह बणी है ते दूर दे सज्जन नूं ते पता जे तुहाडे दा कत्तड़ दी बड़ा टाइम लगना ते नेड़े दे सज्जन इंसानी हमदर्दी ते भज बणना यार एदा एक्सीडेंट होया या एदा इस वेले कोई मर गया
1: वाकई वाकई गवांडियां दे नाल हमेशा बना के रखनी चाहिए है क्योंकि रिश्तेदार जेड़े ने ना उन्होंने तो कितने टाइम सिर आना है दूर जी ने तुहाडे सक्के रिश्तेदार या धीआं पुत्र भी सर्विसां करदे ने दूर नेड़े पर जेड़ा गवांडी है वो तो तुहाडे कोल है वो तो उस वेले पुज सकदा तुहाडे कोल
0: जी बिलकुल बिलकुल नहीं असा देखिया भी जे साडियां भंडियां भी रही ने बड़े मतलब वैर भी रहे ने
1: अच्छा
0: औखे वेले जेड़े ने ओ भाई जिन्हां नाल भंडियां लड़ाईयां सन ओ भजदे
1: अच्छा जी अच्छा बिलकुल
0: अच्छा
1: गवांडी इस करके मतलब की वाकई गवांड नाल कदी भी नहीं बिगाड़नी चाहिदी गवांड नाल हमेशा फ्रेंडली रहना सब तो पहला
0: और कोई मुलक गवांडियां नाल पंगे लै के ते तरक्की नहीं कर
1: सकता नहीं कर सकता बिल्कुल ठीक फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया सो इस करके अपने महल घट तो घट अपने वेखो जे साडी बाजार किसी नाल झगड़ा हो जाता रेलवे स्टेशन ते हो जाता जा बस विच जा ट्रेन च वो कोई किसी पासे दा वो कदी तुर गया किते तुर गए मुड़के मिलना नहीं पर जे गुआंढ नाल साडा खड़िकार होएगा वो ते रोज मत्थे लगने ने
0: जी बिल्कुल बिल्कुल वेखो इंडिया पाकिस्तान जिन्ना पैसा असले ते ला छड़िया ते दफा उत्ते सत्रह पंजहत्तर साल इना जे इथे तरक्याती कमां ते लगदा लड़ाईयां ना हुंदियां दुआं दा जिवें यूरोपियन मुल्कां दे पलक ने या अमरीका कनेडा दे ने इंज हुंदे ते सानू ए बाहर प्रदेश दे धक्के खाने पैंदे सन उत्थे ते इन्ने वसायल ने ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਦਨੀ ਵਸਾਇਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ
0: ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸਨ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਸਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਆਂ ਸਨ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ